0: പ്രൈസ് ഹുണ്ടായിൽ നിന്നും ജൂലൈ 20-നകം ഒരു പുതുപുത്തൻ ഹുണ്ടായി കാർ സ്വന്തമാക്കൂ. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് മെഗാ ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ വമ്പൻ സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ. ചുങ്കത്ത് പ്രൈസ് ഹുണ്ടായി, കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, നിലമേൽ. ഫോൺ 8714624012.
1: मैं हूँ आरजे आकांक्षा और लेकर आ रही हूँ आपके लिए प्यार भरी आवाज लाइव प्रोग्राम, जो सिर्फ एक गीत ही नहीं, एक जज्बात और एक सुकून होगा और सबसे खास सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के करीब होगा। तो सुनना मत भूलिए प्यार भरी आवाज सिर्फ और सिर्फ आरजे आकांक्षा के साथ। हर सुर मोहब्बत, हर बात में सुकून, हर बात में सुकून। हर ट्यूसडे सुबह 11 बजे कॉल 0474-293-1111। सिर्फ कम्युनिटी रेडियो बेंसिकर 107.8 पर।
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बढ़िया है। वैसे मैं भी बढ़िया हूँ आप सब की तरह। वैसे दोस्तों, बारिश के मौसम है और ये बारिश शायद और अगले 2-3 महीने चलेगी, है ना? तो इसी बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों से सुहाना मौसम है और इस खूबसूरत दिन को भी और थोड़ा सा हसीन बनाने के लिए आ गई हूँ मैं आपकी फेवरेट शो लेकर, प्यार भरी आवाज, वो भी 107.8 पर। वैसे ट्यूसडे का दिन है और आप, मुझे पता है सब लोग बहुत वेट करते हैं मेरी तरह, जैसे मैं भी आप सबसे मिलने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए बहुत वेट करती हूँ। और वैसे दोस्तों, आप कहीं पे भी हो, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, या कहीं ड्राइव कर रहे हो, कोई भी हो, मतलब कोई किसी का कुछ भी हो, तो वो जो है रहता है ना, मैं हर ट्यूसडे आपके लिए और आपकी फेवरेट के गानों लेकर आती हूँ। मेरे साथ सुनिए प्यार भरी आवाज ओनली ऑन 107.8 पर। तो तैयार हो जाए दोस्तों, दिल खोल कर मुस्कुराइए, क्योंकि शुरू होने वाला है आपका अपना फेवरेट शो प्यार भरी आवाज, वो भी मेरे साथ आपकी दोस्त होस्ट आरजे आकांक्षा। दोस्तों, हर जनरेशन का गाना और हर जनरेशन के पास कुछ ऐसे गाने होते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिन्हें सुनते ही लगता है कि हम फिर से बचपन के स्कूल के दिनों में चले गए। वैसे एक गाना, वो भी समर वेकेशंस कैसेट प्लेयर में हर टाइम पे बजता था। तो चलिए सुनते हैं वो खूबसूरत सा गाना जिसे गाया है फाल्गुनी जी ने, ओनली ऑन 107.8 पर।

0: हर जनरेशन के पास होते हैं कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनते ही लगता है कि हम बचपन में फिर से चले गए हैं। जैसे कभी समर वेकेशन हो या कैसेट प्लेयर्स, काउंटडाउन टीवी शोज और कुछ भी, हर जगह पर ये गाना बजता था जब मैं छोटी थी तो, और मैं ये गाना सुन के बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए ये गाना सबसे मेरा फेवरेट है। और आप लोगों में से कितने लोग फाल्गुनी पाठक जी को जानते हैं? अगर नहीं तो एक बार गूगल कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया सिंगर है ये। और सच कहूँ तो कभी कभी कुछ गाने कभी भी ओल्ड नहीं होते हैं। ये गाना उन्हीं गानों में से था जिसे सुनते ही पूरी बचपन की यादें याद आती है, जब हम लोग कजन्स के साथ छुट्टी मनाने जाते हैं, घर पे मामा जी के पास खेलने जाते हैं, तो ये गाना तो कहीं सुबह मतलब बजता था एक साइड पे। और अगर ये गाना सुन के आपके चेहरे पे भी थोड़ी सी मुस्कान है तो क्या बात है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉलर के, हमारे आज के पहले कॉलर से, डायल करें 04742931111 पर, 04742931111 पर। मिलते हैं हमारे आज के फेवरेट कॉलर, कौन है और कौन सा फेवरेट गाना लेकर आते हैं देखते हैं। हेलो
1: हेलो अक्षा, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं ओमना कलमदार से।
0: ओके बताइए कैसे हैं आप?
1: ठीक है, चल चलते हैं, डबे चला चला रहे जिंदगी आगे किस रहे।
0: आप कौन

सनम फिल्म से गाना प्ले कर देंगे। तो चलिए प्ले करते हैं उनका फेवरेट कोई भी एक गाना जो वो सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए ओनली ऑन 107.8 पर प्यार भरी आवाज़, कीप लिसनिंग।

0: कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि जब मोहब्बत दिल में घर कर लेती है तो नींद आंखों से और सुकून दिल से चला जाता है। बहुत सारे लोग इस बात पे अग्री करेंगे। हर पल बस एक चेहरा नजर आता है, हर ख्याल में बस उसका ही नाम होता है। ये था ये खूबसूरत सा गाना फ्रॉम सनम मूवी से, जिसे गाया था बड़े पॉपुलर आवाज़ ने, वो दो आवाज़ों ने 90s में इतना सबके दिलों पे राज किया है कि वो वन एंड ओनली ओजी सिंगर्स कुमार शानू और अलका याग्निक जी थे। तो चलिए, आप सुन रहे हैं प्यार भरी आवाज, वो भी मेरे साथ, आज ही आकांक्षा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। वैसे एक छोटे से ब्रेक के टाइम आ गया है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। मैं यू गई और यू आई, कीप लिसनिंग प्यार भरी आवाज।
1: ഈ ഫുട്ബോൾ സീസൺ ഹ്യുണ്ടായി കാറുകളുടെ സർവീസിംഗിനൊപ്പം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു മികവുറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങൾ. അതെ, ചുങ്കക്സ് പ്രൈസ് ഹ്യുണ്ടായി സർവീസ് സെന്ററിൽ സർവീസിംഗിനൊപ്പം കരസ്ഥമാക്കൂ സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിൻ കൂപ്പൺ. ദിവസവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് അടുത്ത പെയ്ഡ് സർവീസിൽ 40% വരെ ലേബർ ഡിസ്കൗണ്ട് നേടാം. ചുങ്കക്സ് പ്രൈസ് ഹ്യുണ്ടായി സർവീസ് സെന്റർ, കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി, നിലമേൽ. ഈ ഓഫർ ജൂലൈ 20 വരെ മാത്രം. കോൾ 8714624010.
0: एक गाना, ढेर सारी खुशियाँ, बस आपकी कॉल की देरी है दोस्तों। कॉल करिए 0474-293-1111 पर, 0474-293-1111 पर। और हमें ऑलरेडी कॉलर कनेक्ट हो चुके हैं, देखते हैं कौन सा गाना हम सबके साथ सुनना पसंद करेंगे। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते,
0: गुड मॉर्निंग, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं दोस्त?
2: मॉर्निंग, हम पेरिमल से मुरलीधरन बात कर रहा है।
0: कैसे हैं मुरिता जी?
2: ठीक है, ठीक है, अच्छा जाता है।
0: ओके, कैसे दिन जा रहा है आपका?
2: आप कैसे हो? आप कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ, शुक्रिया।
2: अभी क्लाइमेट भी अच्छा है।
0: हाँ,
2: बरसात, गर्मी, धूप, सब कुछ मिक्स है।
0: एकदम मस्त वाला मौसम है, एकदम
2: मौसम एकदम मजा वाला है।
0: जी जी जी, बताइए क्या क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप?
2: हम तो अभी कुछ

0: नहीं कर सकते, हम तो ब्लाइंड है।
1: जी जी
0: हम तो पहले अहमदाबाद में था ना।
1: हाँ हाँ
0: 23 ईयर्स हम अहमदाबाद में काम करता था।
1: हाँ हाँ
0: हाँ उधर से हमारे आंखों में जो ऑपरेशन किया उसके बाद कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया।
1: ओके
0: और 95 में वापिस आया, अभी देश में बिल्कुल आराम करता है।
1: आराम कर रहे हैं और प्यार भरी आवाज सुन रहे हैं।
0: सुनते रहता है पूरा दिन, रेडियो सुनते रहता है।
1: क्या बात है। तो आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
0: हम तुम एक कमरे में बंद हो।
1: हम तुम एक कमरे में बंद हो, क्या बात है। और चाबी किधर?
0: कमरे में से निकालना पड़ेगा।
1: पर चाबी तो नहीं है ना इस गाने में, तो कैसे खोलेंगे?
0: तो चाबी से।
1: और चाबी खो जाए। ऐसे ही हंसते रहिएगा दोस्त, बढ़िया लगता है, ऐसी आपकी खुशी बनी रहे। ऑलराइट, तो चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सुनते हैं आपका ये फेवरेट गाना, हम तुम एक कमरे में बंद हो, ओनली ऑन प्यार भरी आवाज 107.8 पर। कीप लिसनिंग।

0: आप सुन रहे हैं प्यार भरी आवाज मेरे साथ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आकांक्षा। दोस्तों, आपका भी फेवरेट गाना बज सकता है, पर उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा ये नंबर 0474293111 पर, 0474293111 पर। देखो दोस्तों, शर्माने की कोई बात नहीं है, कॉल करिए, बात करिए मुझसे। अगर आप बात नहीं करेंगे कॉल पे तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा रेडियो पे बात करने के लिए। सो डोंट वरी, आई एम देयर, सो प्लीज कॉल अस 0474293111 पर। और हमारे कॉलर ऑलरेडी लाइन पे है, देखते हैं कौरव कहाँ से है। हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से दोस्त?
1: रंगपन से बात कर रहे हैं, नाम है।
0: ओके, कैसे हैं आप दोस्त?
1: ठीक है, आप कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया।
1: तबियत अच्छा होता ना?
0: हाँ, और आप क्या कर रहे हो?
1: कुछ नहीं, काम हो गया पहले।
0: अच्छा,
1: अच्छा, आराम से रूम बैठ कर अच्छा हमारा प्रोग्राम अभी टाइम मिल रहा है।
0: शुक्रिया। वैसे नाश्ता वाश्ता हो गया आपका?
1: क्या,
0: ब्रेकफास्ट हो गया?
1: हो गया।
0: ओके ओके, तो आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: हाँ,
0: कौन सा गाना?
1: चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।
0: ओहो, क्या बात है, ये मेरा भी फेवरेट गाना है।
1: ठीक है,
0: ऑल राइट, तो सुनते हैं ये मस्त गाना जिससे यू नो द केमिस्ट्री इन दिस सॉन्ग इज ब्यूटिफुल केमिस्ट्री ऑफ अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी। और गाया किसने है, क्या लगता है आपको दोस्तों? वही आवाज जिसने 90s के दिनों में हम सब पे, सबके दिल पे राज किया है, वन एंड ओनली कुमार शानू एंड अलका जी, ओनली ऑन 107.8 पर प्यार भरी आवाज़।

0: ये था मस्ती भरा गाना चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। वैसे होता है ये, मतलब ये एटीट्यूड होता है जब हम किसी का दिल चुराते हैं, या वो ऑफ कोर्स वो कहेंगे चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। और वैसे आप सुन रहे हैं मेरे साथ प्यार भरी आवाज़, आपकी दोस्त और होस्ट आरजे आकांक्षा। डायल करें अपने फेवरेट गाने मेरे साथ और हम सब के साथ सुनने के लिए 0474-293-1111 पर। मिलते हैं अगले कॉलर से, कौन सा फेवरेट गाना लेकर आए हैं जनाब। हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग, ये कौन है, कौन बात कर रहा है, कहाँ से है? ओके,
2: टेलर हो, दर्जी का काम कर रहे हैं।
0: हाँ, याद आया, याद आया, कैसे हैं आप?
2: एक बार बुलाया था।
0: जी जी जी जी, कैसे हैं आप?
2: हाँ ठीक है ठीक है।
0: ऐसे काम कैसे चल रहा है, लोड है या कैसे?
2: चल रहा है अभी, ज्यादा नहीं है फिर भी जैसा चल रहा है।
0: ओके, तो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे दोस्त?
2: सुने ना गाना पसंद आ रहा
0: है। कौन सा वाला?
2: सुनेना।
0: ओके, इसी आवाज के साथ प्ले करेंगे सुनेना आपके लिए ओनली ऑन 107.8 पर। आपका दिन शुभ हो, कीप लिसनिंग।

0: मेरे हम सब प्यार से आ संग मेरे गा निजगम पानी सरी गा आ निज निज नी निज निज नी गम गम पानी सिन से गा गारी गा निज निज नी गम पानी सा
1: ओके वैसे मैं एक बात बोलूं, हेलो
0: ओके
1: आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज? वैसे आपको कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, सिंगिंग कंपटीशन में
0: हम जाए ना डेली इधर वही पार्ट को ना कंपटीशन
1: ना। ओके ऑलराइट देन कीप लिसनिंग, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कीप लिसनिंग प्यार भरी आवाज, ये रहा आपका फेवरेट गाना ओनली ऑन 107.8 पर।

0: ये था खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन 107.8 पर प्यार भरी आवाज। वैसे दोस्तों आप भी अपने इस फेवरेट गाने मेरे साथ सुन सकते हैं, वो भी कहाँ पे, ओनली ऑन प्यार भरी आवाज। डायल करें 0474-293-1111 पर, 0474-293-1111 पर। मिलते हैं अगले कॉलर से। कॉलर कहाँ से है? हेलो
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी,
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: आपके प्रोग्राम में।
0: शुक्रिया। वैसे कौन बात कर रहे हैं दोस्त
1: जी?
0: आप कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम शारी है, मैं चेन्नई से फोन कर रही हूँ।
0: नमस्ते शारी जी।
1: नमस्ते जी,
0: बताइए कैसे दिन जा रहा है आपका?
1: बहुत बढ़िया है, वैसे तो यहाँ भी थोड़ा बारिश हो रहा है तो थोड़ा गर्मी कम हो गया चेन्नई में।
0: वैसे क्या करें अभी आप, मतलब करते क्या है?
1: मैं डिजाइनर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ। okay. तो मैं बिल्डिंग्स और कॉलोनीज डिजाइन करती हूँ, कुछ कमर्शियल स्पेस।
0: वाओ, ओके। और वैसे कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज, आपका फेवरेट वाला?
1: एक्चुअली मैं आज एक डेडिकेशन करना चाहती हूँ, मेरे एक बहुत प्यारे से भैया हैं जिनका नाम विजय है। उनका कल 60th बर्थडे है।
0: कल है, ओके।
1: और वैसे भी हमारा फैमिली बहुत प्यार भरा फैमिली है, बड़ा प्यारा सा, पर हमारे फैमिली का एक शब्द है ये विजय भैया, जो प्यार भरा चंपी की नहीं, हंसी भरा चंपी भी है।
0: ओके।
1: तो मैं आज डेडिकेट करना चाहती हूँ हमारे प्यार भरे हंसी भरे चंपी के लिए, विजय आनंद के लिए, ये गाना रफी साहब का।
0: ओके।
1: कल जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए,
0: क्या बात है,
1: प्यारे पास हमारे।
0: आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। ऑलराइट। और हम सब की तरफ से आपके भैया को ढेर सारी बधाइयां, हैप्पी बर्थडे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कीप लिसनिंग प्यार भरी आवाज ओनली ऑन 107.8 पर। और ये है बड़ा मजाकिया भरा सॉन्ग दोस्तों, तो दिल थाम के बैठिएगा, सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

इस गाने ने तो मुझे अपनी माँ वाली चंपी याद आ गई मुझे, बहुत ही प्यारी वाली। तो दोस्तों, वैसे देखते ही देखते प्यार भरी आवाज़ का सफ़र अपनी मंजिल तक पहुँच गया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो हर ट्यूसडे अपना वक्त निकाल के मेरे साथ इस महफिल में बैठ जाते हैं बहुत खूबसूरत गाना सुनने के लिए। आपका साथ ही इस शो की असली ताकत है। अब इजाज़त दीजिए दोस्तों, जाने का वक्त आ गया है। जाते जाते छोड़ जाऊंगी एक एवरग्रीन सा गाना जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए। ओनली ऑन 107.8 पर कीप लिसनिंग प्यार भरी आवाज। मिलेंगे अगले ट्यूसडे इसी सेम टाइम पे। टेक केयर, बाय बाय, स्प्रेड लॉट्स ऑफ लव, बी काइंड टू एवरीबॉडी। साइनिंग ऑफ, आरजे आकांक्षा।